गोविंद नाम मत बीसरे। ए बैन उस गोविंद दा नाम ना विसरे, क्योंकि जे नाम विसर गया ता फिर की हाल होवेगा, जुड़ना विच भटकना पवेगा, दुखी होवांगे इंसान इस दुनिया विच जन्म।

अपनी लड़कियां नाल प्यार करता है, सोने मकान बनाने वास्ते यतन करता है। ऐसे इंसान भी ने जिहड़े इन्हां चीजां नाल प्यार करते, पर उन्हां नूं अखीर मिलदा की है? आप जी बयान करते ने, ते जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे नाल प्रीत करे उन्हूं की मिलदा है? भगत त्रिलोचन जी अपने शब्द विच बयान करते ने, अखीर नतीजा यह कढ़िया, दुनिया नाल प्रीत करो तां दुख मिलदे ने, उस गोबिंद दे नाम दे नाल प्रीत करो तां उहदे चरणां विच जग

अंत काल जो लक्ष्मी सिमर लक्ष्मी के माया जेड़ा इंसान सारी उम्र यही सोचता रवे कि वध तू वध पैसे कमा लो भावे ओदे वास्ते पाप करने पे भावे ठगी करनी पवे भावे डाका मारना पवे पर पैसे जरूर कठे करना अंत वेला आंदा नाम नहीं जपया मरण लग गए ते तामी चिंता करता है कि दुनिया तू एवें तुर चले हैं मन मुताबक कमाया भी नहीं कमाई अंत वेले माया वाले ध्यान मौत हो गई तां भगत जी बयान करते ने उस इंसान नू अगला जन्म कदा

कोई निशान, जेड़ा अंत वेले भी औरत वाल ध्यान रखे नाम नहीं जपदा, बेसवा जौन वल वल औतर है, उस इंसान नू अगला जन्म बेसवा दा मिलदा। बेसवा दा जन्म लैके वो इंसान अपनी काम दी तृष्णा पूरी करदा है। ए जड़ियां बेसवा आपा देखने हैं, ए ओ कामी पुरुष ने जेड़े हर वक्त काम

अंत काल जो लड़के सिमरे जिड़ा इंसान सारी उम्र तिया पुत्रा वाली ध्यान रखे नाम ना जपे अंत वेले भी उदा ध्यान लड़किया वाल है नाम नहीं जपया नाम वाल ध्यान नहीं जे लड़के होए आग्या कर नहीं तां दुखी जे लड़का कोई नहीं होया तां दुखी ए नहीं कहिंदा कि परमेश्वर जे तू दिता तेरी खुशी जे लड़का नहीं दिता तां भी तेरी खुशी उदा नाम नहीं जपया अंत वेले भी लड़के का ध्यान मौत हो गई

नाम ना जपे मौत हो जाए ता ओदा अगला जन्म सुकर जोन अगला जन्म ओनू सूर दा मिलदा है। आपने देखिया होवेगा के सूर दे सत सत अठ अठ बच्चे हुंदे ने। इस तरह ओ इंसान सूर दी जुने पै के अपने बच्चियां वाली तृष्णा पूरी करदा है। भगत जी कहंदे ने जिहड़ा अंत वेले लड़कियां वल ध्यान रखे अगले

कोई मकान भी ना बना सके, सिमरन नहीं कीता, मरन लगे हां भी सोने मकाना वाले ध्यान, इसे चिंता विच ही मर गए हैं।

सतगुरु जी ने यह कहा कि दुनी चंद तेरा पिता जोना विच भटक रहा है, फिर तिना दिना दा भुख है, नाले ओ रोटी नहीं खांदा, ओ ता मास खांदा। तेरा पिता बगियाड़ दी जोन विच है। ए गल सुनी जिन्ने लोग बैठे सन सारयां नूं रोटी खानी भुल गई, सारयां दी निगाह धन गुरु नानक साहब दे चेहरे ते गड्डी गई। दुनी चंद भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह जे मेरा पिता मुक्ति नूं प्राप्त नहीं होया और बगियाड़ दी जून विच है, मैं कई सालां तों हजारां रुपए खर्च करके इस राज भंडारे करना हूं, ते की मेरा ए दान पुन मेरा ए भंडारा करना सब व्यर्थ चला गया। साहब जी कहन लगे, नहीं तू नहीं चंद, तेरे दान पुन दी सदका ही अकाल पुरख ने सानू तेरे कोल भेजिया, तेरे पिता नु मुक्त करन वास्ते। इस तरह कर, ए जिहड़ा प्रशादा तू साडे सामने रखे है इहनू चुक लै, लाहौर दे दक्षण वाले पासे 3 मील दी विथ ते इक झाड़ी है, उस झाड़ी दे कोल तेरा पिता बगियाड़ दी जून विच तिन्ना दिना दा भुखा लम्मा पे है। डरी ना, कोल जाके आवाज मारी, वो सिर चुकेगा, मानो तेनू बुला रहा होवेगा, ते ए प्रशादा ओदे अगे रख दे। दुनी चंद ने प्रशादा टकिया, उस प्रशादे ते धन गुरु नानक साहब की मेहर की निगाह पै चुकी सी। प्रशादा लैके दुनी चंद शहर के बाहर तुर पे है, ते भगत त्रिलोचन जी कहिंदे ने, ऐ भाई जे जूना विच नहीं भटकना

पुत्र पूछन लगा, पिता जी मैं ता बड़ा दान पुन कीता, बड़े भंडारे कीते, पर तुसी ए बग्याड़ दी जोन किस तरह लई? ता दुनी चंदा पिता कहन लगा, बेटा मैं बमार सा, मंजी ते बेया, मेरा अंत वेला आया, उधरों किसे दे गुआंडी दे कर मास रिजा मैनु खुशबू आई, मेरा चित कीता जे थोड़ा जिहा मास मिल जावे मेरा मुंह करारा हो जाए, क्योंकि बीमार सां ते मुंह दा स्वाद ठीक नहीं सी। मास दी खुशबू आई ता चित कीता कि मैं मास खावां, उधर मेरी मौत हो गई ते वाशना दा बदा मैं बग्याड़ दी जूने पै गया। जिस तरह की भगत त्रिलोचन जी बयान करते ने, ऐ भाई जेड़ा इंसान जो सोचता मरदा अंत वेले ओहो ये जन्म ओनू अगे प्राप्त हुंदा है। ऐ बेटा मरन वेले मेरी इच्छा मास खाण दी सी, परमेश्वर दे नाम वाल ध्यान नहीं सी, इस करके मैं बग्याड़ दी जूने पिया ते बड़ा दुख भोगया, पर भाग चंगे ने कि तेरे घर धन गुरु नानक साहब आए ने, उन्हां दे सदका हुण मैं तां मुक्ति नूं प्राप्त हो गया। पर बेटा हुण तू जा, तू भी गुरु नानक साहब दे चरणां ते डिग पै ता कि तेरा भी जन्म मरण सौर जावे। इन्नी गल कही दुनी चंद दा पिता सचखंड नूं चला गया। दुनी चंद हुण खुशी खुशी वापस

समझदी मैं बड़ी सोहनी है, मैं बड़ी तेज भजनी है, मैनू कौन फड़ सकदा है। इसे हंकार दे विच ही वो मौत नूं भुल जांदी है।

सतगुरु जी कहंदे ने भाई रे ऐ इंसान ऐसे तरह तू भी अपने सिर ते मौत नु समझ। जिस तरह मच्छी ते अचानक जाल पै जांदा है ऐसे तरह अचानक ही तेनू भी मौत आ जानी है। तेनू पता नहीं लगना तेरा कारोबार तेरे साठ संबंधी तेरी रिश्तेदारी तेरियां बादशाहियां तेरे मकान सब कुछ छुट जाना है जदू तेनू मौत आ गई और आनी जरूर है। कदू आवेगी ते तेनू पता नहीं लगना।

सब जग बाधो काल को, सारा जग मौत दे वस है, सारिया नू मौत आनी है, पर कदू आनी किसी नू पता नहीं, मरना जरूर है, मौत तू कदी कोई बचिया नहीं, पर समझ नहीं आती इंसान फिर भी क्यों हंकार करता है, पता भी है मैं मर जाना, मेरे नाल कुछ नहीं जाना, पर इंसान फिर भी पाप करता है, फिर भी नाम नहीं जपदा, कहता ए भी मेरा ए भी मेरा, पर कुछ भी इसका नहीं, प्यार ऐसा ही है, कहते सारे ने कि मेरा बड़ा प्यार है, पर धन गुरु नानक साहब कहते ने को मरे ना मोया नाले, जिहड़ा इंसान मर जांदा है ओहदे नाल मरदा कोई नहीं। एक औरत आदमी दा पुत्र मर गया, बड़े रो, मां भी कवे बेटा तू ना मरदा मैं मर जांदा, पिता भी कवे तू क्यों मर गया तेरी जगह मैं मर जांदा, मेरी उम्र तेनू लग जांदी। इन्हां दोनों दा ए रोना देख के कोई महापुरुष उस पासे आ निकले।

दुख है भी पुत्र मरे, पर रो रहे सन कि बेटा तू ना मरदा असी मर जांदे। इना दोना दा रोना देख के महापुरुष कहन लगे, तुसी दोनों अपने पुत्र नाल प्यार कर दे। कहन लगे हां। महापुरुष कहन लगे, तुसी ये चाहते हो कि असी मर जाइए साडा पुत्र जिंदा हो जाए। कहन लगे हां। महापुरुष कहन लगे, फिर इस तरह करो, मेरे को एक जहर का प्याला है, जिन्हों पुत्र नाल ज्यादा प्यार है वह पी लवे, वह मर जाएगा, उसकी जगह उसका पुत्र जिंदा हो जाएगा। जो जहर का प्याला देखिया ते ना फिर मां का दिल करी ते ना पिता का। मोह तो है पर मरना बड़ा औखा है। तो गुरु साहब जी ते इथों तक कहंदे ने, भाई ऐसो यो संसार वेखना रहन ना को पई है रे, ये जड़ा तू संसार देखदा बड़ा सोहना लगदा, बड़े सुख ने इस संसार दे विच, पर इस संसार से हमेशा कोई रहिंदा नहीं, किसी ने अज मरना है किसी ने कल मरना है। इस करके भाई उस परमेश्वर

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ये शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू यह पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो, जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

0: नगन फिरत जो पाये जोग, वन का मिरग मुकट सब होग।
1: गुरबाणी बार बार समझाए कह रहे ने पासा, जे इस तरह जोग जिस परमात्मा इस तरह मिल जाता ते मिरग भी इस तरह नंगी ही जंगल दे विच घूम रहे ने फिर रहे ने। कहते ने

मेरी सेजड़िए आडंबर बने अवनाशी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया मेरी सेज सोही देख मोही गुरु के सिख दा हिरदा हिरदे दी सेजा हिरदे दा मंदर उदों जगमगाउंदा है उदों शोभनीक हुंदा है जदों साहिब प्यारा इहदे हिरदे दी सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है जदों वसदा हिरदे दी सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। ते जेड़ा सतगुरु गरीब नूं आए सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तों बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नूं आज कहिंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नूं।

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैण उसनू मां भैण दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू अज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नू मां भैण ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू अज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू अज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इना दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे, जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान, बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वादू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने

जी साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो विष्टा का किरम होए जन्म गवायो वाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथों सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी।

रोजाना दा उचारण वाहेगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहेगुरु वाहेगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहेगुरु करे, घर विच बैठा वाहेगुरु करे, रसना दे उपर वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु दा टिका होवे, ते वाहेगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहेगुरु हिरदे च वसे भई वाहेगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नू आज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा।

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिनिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान।

जपना जिन्ना भी जपना जिन्ना भी वाहिगुरु कहना हिरदे दे नाल कहना। गरीब नवाज साहब सचे पातशाह महाराज फुरमान करदे ने गुरसिख रहत सुनो हे मीत उठ प्रभात करो हित चीत वाहिगुरु गुरमंत्र सुजाप इशनान करके वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करना फिर जपजी साहब जाप साहब दा पाठ करना संध्या समय रहराज साहब जी दा पाठ करना ते बराजन वेले सौन वेले कीर्तन सोला साहब जी की गुरबाणी पढ़ के अरदास करके गरीब नवाज दे चरणा च सतगुरु आप जी की कृपा अनुसार चार पैर दिते हुए दिन आप जी दे बतीत हो गए ने। चार पैर रात्रि आई है सतगुरु तेरी कृपा द्वारा बतीत होवे तेरे ही दीदार होण तेरे ही नामदारी दे अंदर वासा होवे। गरीब नवाज साहब सचे

कीर्तन तो बाद कथा होंदी सी शाम नूं। अज भी पंजाब दी धरती दे उपर कीर्तन तो उपरंत कथा होंदी है, कथा भी सुननी। जेड़े इन्हां नियमां दे धारनी होणगे ओह सिख अमरापुरी दे अंदर निवास करनगे, जिथे एक बार जाके गुरु का सिख मुक्त हो जांदा है। सचखंड जिसका नाम है उथे मैं दर्शन देंगा गुरु के सिख नूं, जिथे मेरा निवास उथे गुरु के सिख।

नंद लाल जी मैं वचन कह ना गुरसिखा ये गल नहीं भी केवल गुरसिखा वास्ते ही ने भाई जेड़े गुरसिखा ने अमृत छकिया है मैं इन्हों वाक दिते ने मता तुहाडे मन अंदर कोई ख्याल आ जाए भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इतनी करड़ मर्यादा दिती सख्त मर्यादा दिती है इस करके मैं आप जी नू अपना भी एक वचन दसना जो मेरे पूरे पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने मैनू

गुरु नानक पद पंकज वंदन गुरु नानक पद पंकज वंदन सिमरो अंगद दुख नकंदन अमरदास गुरु।

हर गोविंद सब मत प्रकाशक, गुरु हर राय नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी, तेग बहादुर परम कृपाला, श्री गुरु गोविंद सिंह बसाला। तरों तरा तरपन पुन सीसा, बंदों बार बार जगदीसा। जा मैं अमृत नाम है, ज्ञान भक्त वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत, बंदों कर अनुराग। गुर के शब्द

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच भरम दे भटकते फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतते फिरदे हां। अनेक तरह के दुखां सुखां विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उनां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उनां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिवजी

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभाव साधु सुभाव सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढालिया। साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करन वाला सी। बोलो
1: सतनाम।
0: साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहिब जाके साधुआं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उसदे ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास हुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसदे कन्न भर दित्ते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घर वाली तेरी कदे ख्याल रखिया। वह साधुआं नूं ही खवाई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकते, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आना है। सो साध संगत परंतु हुण ओह किथे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: अकाल। जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह। कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां ओही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारे ने नाम दी दात दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू इह गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी, साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन लत्तां भी साध संग कमजोर हो गई, तुरया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध हुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालके नूं अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालके नूं अपने चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ए बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ए फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहन कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ए बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीद ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतियां। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इस नूं घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उस नूं भी कई लोग लानता पाउण लग गए घर वाले नूं भी, दस तूं की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सास संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़ियां दे पौण ते सुट दिंदे सी, ना कहिंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सास गलेल दे विच सास संगत पा के गोले चलाउंदे, सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सास संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सास संगत उफण जांदा, परंतु सी ना कहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट घट रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। साध संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली होवना।

शबे घट राम बोले रब दे प्यारे जिना ने शब्द की कमाई की थी ओ फिर जिधर वेखते हैं उन्होंने परमेश्वर की जोत।

मैं जिधर वेखदा हां बीठल ही ईश्वर ही ईश्वर नजर आउंदा है ते जिथे वेखदा ईश्वर अपने आनंद विच मगन होया होया है। मैनू कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा तां पंडिया ने आख्या कदी दुध दा ही भोग लवा लिया कर ता भगत नामदेव जी

सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चली है। वो समा मोटरां गड्डियां नहीं सन हुंदियां, सारे पैदल टुरदे सन। इस जथे दे विच एक बजुर्ग बाबा भी टुरिया जा रहा है, सिर ते पंड चुकी हुई है, जिस विच अपने कपड़े ते जो श्रद्धा भावना भेटा है वो बनी हुई है। मन विच श्रद्धा, मन विच प्यार, टुरिया नहीं जांदा फिर भी गुरु दे दर्शनां दी तांग है, गुरु दे प्यार विच टुरिया जा रहा है।

जेड़े श्री अमृतसर नू जांदे ने उन्हां कोलों मैं मजदूरी नहीं दे लैंदा। ए बजुर्ग बड़ा हैरान होया, तू किहो जिहा मजदूर है, कोई पैसा नहीं जे लैणा? नहीं बाबा, जेड़े सतगुरां दे दर्शन नू जांदे ने उन्हां कोलों मैं पैसे नहीं दे लैंदा। टुरे जा रहे ने सतगुरां ने बख्शिश कीती कि श्री अमृतसर पुजे ने, पर कर्मां दे विच अपने सिर तों ए कपड़ियां दी पांड लाई, बाबा आ पिया तेरा समान ते मैं हुण चलिया। ते बजुर्ग बाबा बड़ा हैरान होया, तू किहो जिहा मजदूर है? सारे रस्ते गुरु दियां गल्लां सुणांदा आया ते पैसा भी कोई नहीं दे लिया। भई तेरे वर्गा चंगा बंदा कदों जिंदगी विच मिलदा है? आ इंज ना जा, बाबा आख रिया है, इंज ना जा, सवेरे सतगुरां दे दर्शन करके जावी, सवेरे दीवान लगना है, मेरे मालक दीवान विच आउणगे ते सतगुरां दे दर्शन करके जावी। इस नौजवान ने आखिया, बाबा हुण मैं जावां, दे तू आखदा है मैं सवेरे फिर आ जावांगा। बाबे ने आखिया, इंज करी दीवान विच आ जावी ते इकट्ठे ही सतगुरां दे दर्शन करांगे। चंगा बाबा, मैं तैनू सवेरे दीवान विच मिलांगा। ते सतसंगियो, सवेर होई है, दीवान सजिया है, तन गुरु अर्जन दे पातशाह तख्त ते बैठे ने, ते बहुत सारियां गुरसिख संगतां नमस्कार करन वास्ते खलोतियां ने, लंबी लाइन लगी हुई है, ते बिच बाबा भी नमस्कार करन वास्ते खलोता है। बारी आई जदों इस बजुर्ग बाबे ने सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार करके सतगुरां दे चेहरे वल तकिया ते तबक के औ परे जा डिगया। सतगुरु बोले, बाबा की होया जे? बाबे दा शरीर कंबण लग पिया, मुख दे विच्चों बोलिया नहीं जा रहा। सतगुरां ने आखिया, बाबा की होया जे? हाथ जोड़ के आखन लगा, सतगुरु एक गल दसो, कोई इहो जिहा मजदूर भी अमृतसर दे विच रहिंदा है जेदी शकल तुहाडे नाल मिलदी होवे? सतगुरु आखन लगे, भी मैं ते कोई इहो जिहा देखिया नहीं। नहीं सतगुरु, जरूर कोई इहो जिहा रहिंदा है जेदी शकल तुहाडे नाल मिलदी है। सच जाणो, अज सतगुरु अपने आसन तो उठ के आए ते बाबे नू घुट के वावां दे विच लिया। बाबा, मैं तेरी गल जान गया हां, तू की कहना चाहुंदा? कल मैं ही तेरा समान अपने सिर ते चुक के लियाया सी। जदों सतगुरां ने इन्नी गल आखी ना, बाबे कोल सुनी ना गई, अखां विच्चों हंजू किर आए, रो के आखिया, सतगुरु मैं किड्डा गुनाहगार हां, तुहाडियां बख्शां लैण वास्ते आया सी, तुहाडियां रहमतां लैण वास्ते आया सी, तुहानू ही समान चुक के लिया है, तुहाडे सिर ते भार चुका के लिया है, मैं किड्डा गुनाहगार। जदों बाबे ने इनियां गल्लां आखियां ते सतगुरु आखण लगे, नहीं बाबा, इंज क्यों करदा है? जेड़े इस दरबार वल नूं आउंदे ने उन्हां दी मजदूरी मैनूं करनी पैंदी है।
ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारिया श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं भी ओ केड़ा भी ऐ जीव जिथे घर परिवार संसार दियां जिम्मेवारियां निभाउंदा है ना, निरंकार की जिम्मेवारी भी निभाया कर। इस दुनिया विचों कुछ भी नाल नहीं ले जाना, सारा कुछ इत्थे ही रह जाना है। ऐ धीआं पुत्तर दोस्त मित्र रिश्तेदार उन्ना चिर ही साढ़े ने जिन्ना चिर इस जेब विच पैसे ने, जां इस तों परे तक लईए जिन्ना चिर इस शरीर विच सवास ने। शरीर विचों सवास निकल गए किसी ने तेरी बात नहीं पुछनी। काकी मात पिता को काको कवन पुरख की जोई, कट फुटे को बात न पूछे काडो काडो होई। आ शरीर रूपी पांडा फुट जावे ना, सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार घरों कढ़ण दियां ही सलाह देंदे ने वी इनू हुण घरों लै चलो, किन्ने बजे संस्कार करना है ऐ ही पुछदे ने। ऐ किसे ने नहीं पुछिया भी इनू होर रखना है, ये जीवदा हो सकता है हो ही नहीं सकता है, पर घर रखण दी कोई सलाह देंदा ही नहीं। काडो काडो होई, सारे घरों कढ़ण दियां सलाहां देंदे ने ते सतगुरु कहिंदे रोज सुणदा भी है। आही हाल तेरा होना है फिर भी नहीं तू सिमरन करदा। एक छोटा जिहा बच्चा हर रोज संगत विच बैठदा है, महापुरशां ने तकिया बई छोटी उम्र दे विच चंगी लिव लगी है, कोल बुलाया आखण लगे बई लाल एनी चंगी लिव तेनू कितों लगी है। आखण लगा बाबा जी एक दिन मेरी अम्मा मैनू आखण लगी वे चुल्हे विच अग चला, मैं बड़िया बड़िया लकड़ां नू चुल्हे विच रखिया तीली लावां ते बुझ जावे। मां मेरी देखदी सी आखण लगी पुत्र अज अग इंज नहीं चलदी, पहलां तीली छोटियां छोटियां लकड़ां नू लाई दी है, पहलां अग छोटियां लकड़ां नू पकड़दी है फिर वड्डियां नू पकड़दी है। ऐसी सट मन ते बजी कि ये जरूरी नहीं बुढ़ा होके ही मरना है, पता नहीं काल मैनू बचपन विच ही ना ले जावे, ते जे पल्ले विच सिमरन ना होया ते केड़ा मुंह दिखावांगा। उस दिन तो

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होगा, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी, हुण तेरा कारोबार